0: A massive fatal fire broke out at Hotel Flourish, say B&B, in Malviyanagar area of New Delhi. According to police, at least 21 people have died and at least 40 have been rescued. In the tragedy, which began at 8:48 a.m., the flames aggressively spread throughout the multi-storied commercial structure. Visuals showed at least two people jumping off from the upper levels of the building. The firefighters from the Delhi Fire Service cut through the structure to rescue many individuals trapped inside the building's basement. The fire has since been extinguished, and all concerned agencies remain deployed at the spot to ensure every possible assistance to them. Those who sustained severe burn injuries were rushed to nearby hospitals via centralized accident and trauma services.
1: 8 patients ventilator pe hain, unka ilaaj chal raha hai. Ventilator pe jo patients hain, majority of them ko wahi asphyxiation wali injury hui hai, jispe smoke ki wajah se lungs mein injury ho jati hai. Inme se minor burns hain sabke, jyada deep burns nahi hai. Ek patient tha jiske 20-25% se upar burns the, wo ventilator pe tha patient, to usko humne Safdarjung ke burns ward mein shift kar diya hai. 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं.
2: सबसे पहले हम लोग भी पहुंचे थे, सरकार ने बहुत यहाँ पूरी जरूरी थी, 8 गड्ढे भी खा दिए थे सब लोगों ने. जितने इमीडिएट ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी, यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला. मोस्टली कॉलोनी के समय सीढ़ियों पे, बाथरूम में जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया. तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे. धुएं की वजह से हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गांव के लोग हैं, मैं अपने काम कर रहा हूँ, लेकिन हम सबके साथ इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में हाथ लग गए क्योंकि हम चप्पल थे.
0: The fire originated at the E3 level before quickly engulfing the floors above, although a definitive cause is still being evaluated by forensic teams. PM Modi has expressed grief over the loss of lives. He has announced a relief of 2 lakh rupees for the next of kin of those killed, while injured will be given each.

0: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ.
1: D.K. Shivakumar takes oath as the Chief Minister of Karnataka, marking a formal leadership transition in the state government. Shivakumar's A Delhi court orders the framing of charges in Makoka linked with extortion allegations against actor Jacqueline Fernandez, alleged conman Sukesh Chandrasekhar, among others.
2: I first of all challenge him. First of all, let him have some shame, Mr. Satinder Jain, that let him.
1: Here at Beyond, we've been tracking the Delhi fire tragedy. At least 21 people, including many foreign nationals, have been killed after a massive fire at a hotel in South Delhi's Malviya Nagar. The cause of the fire is yet to be ascertained. The fire that broke out at around 8:50 a.m. this morning started from the eatery located at the basement and soon engulfed the five-story building. The fire that engulfed Flourish stay bed and first later spread to another hotel, Mikasa Inn, next to it. The visuals that emerged from the incident showed people jumping out of the building amid the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the fall of people. The hotel, located in the narrow lanes of Hosni, was owned by one Lovekesh Bajaj. Reports suggest that Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by the guests. The hotel reportedly had no fire NOC. At the time of the incident, there were at least 40 guests inside the hotel, including foreigners who were in the national capital for medical treatment.
3: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कॉन्स्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी, और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी। वहां से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं, स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे, 4 जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहां पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंसेज को कॉल कर रहे थे, जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10 12 15 लोग बच

0: For decades, one principle has helped prevent a direct clash between the world's biggest military powers: fear. The fear that any nuclear conflict could spiral beyond control. That fear shaped the Cold War. It still shapes military planning today. But now, reports suggest a major shift could be underway. According to a Financial Times report, the United States is discussing whether to expand its nuclear sharing arrangements within NATO, potentially allowing more European countries to host aircraft capable of delivering U.S. nuclear weapons. The discussions reportedly involve NATO's eastern flank, including countries closer to Russia. No agreement is said to be imminent, but talks are underway through NATO channels. Nuclear-capable bombers or strike aircraft are currently deployed in the United Kingdom, France, Germany, Italy, Belgium, and the Netherlands. According to reports, Poland and the Baltic states are eyed as bases for NATO dual-capable aircraft. Right now, experts estimate that around 100 American B-61 nuclear bombs are stored at bases across Belgium, Germany, Italy, and the Netherlands, and Turkey. This comes as the Trump administration pushes European allies to shoulder a greater share of conventional defense responsibilities while maintaining the American nuclear umbrella. Reports say Washington wants to reassure allies that reduced conventional deployments do not mean reduced security commitments. Moscow has repeatedly portrayed NATO's military buildup near its borders as a threat. Any move to place additional nuclear-capable aircraft closer to Russia could heighten tensions at a time when relations are already at their lowest point in decades. And concerns about nuclear escalation are no longer limited to Europe. China is increasing globally. The warning comes as Japan and West Asia continue to reshape global security calculations. Now, these remain discussions, not decisions.
1: International arms control disarmament and the non-proliferation regimes have been severely eroded. A series of nuclear arms control guardrails have collapsed. The two countries with the largest nuclear arsenals have entered the vacuum with no treaties, no verification, and no dialogue.
0: Diplomats say dialogue must continue despite differences. Military planners stress safeguards and clear communications.
2: At least 21 people, including many foreign nationals, were killed after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malveer Nagar. The cause of the fire is yet to be ascertained. The fire, which broke out at around 8:50 a.m. in the morning, started from the eatery located at the basement and soon engulfed the five-story building. The fire later spread to another hotel called Mikasa Inn, which is next to it. Horrifying visuals from the incident showed people jumping out of windows in the middle of the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were escaping. The hotel, located in the narrow lanes of Hors Rani, was owned by one Lavkesh Bajaj. Reports say Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by guests. The hotel reportedly had nor fire knock. At the time of the incident, there were at least 40 guests inside the hotel, including foreigners, who were in the national capital for medical treatment.
3: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था जिससे मेरा दम घुट रहा था तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड आए और हमने खिड़कियां तोड़ी दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी वहां से लोग बाहर निकले हमने कहा लोगों को जम करो तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए हमने कहा अब आप कूदिए तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी उनके पापा थे वो लोग कूदे और चार जन जेंट्स कूदे चार जन लेडीज कूदी लगभग 10 से 12 लोग वहां पे जम करे जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10, 12, 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी आग बहुत बढ़ चुकी थी। बड़ा सबने मिलकर के टीम वर्क करा अपने दरवाजे खोल दिए हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला जो हमें चाहिए था हमें सब मिला समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
4: वेंटिलेटर पे उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे माइनर इंजरीज के साथ आए थे तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
2: The Prime Minister of India has expressed grief over the loss of lives. The Prime Minister has announced to those who were killed while

0: बचाना है, वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके बहुत सारी खिड़कियां थी, हमने ईंट के पत्थर उठा करके निकले। हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम रियाजुद्दीन भाई लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और चार जन जेंट्स कूदे, चार जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहां पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10 12 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था। सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा, आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए, हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला, समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
1: 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, काम चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वो इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
2: द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स। ही हैज अनाउंस्ड अ रिलीफ ऑफ 2 lakh rupees फॉर द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज किल्ड, व्हाइल द इंजर्ड विल बी गिवन 50,000 rupees ईच। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. In a post on X, the chief minister prayed for the speedy recovery of those injured. Let's talk to our correspondent, Siddhant Sibiyan, now. Siddhant, there was a circular that was issued by the police before they made the arrest of the owner of the hotel. What are the police looking out for? And this investigation has just begun.
3: Well, it is an investigation that has started, and of course, this is indeed a shocking development. All throughout the day, it has been dominating the headline. But 11 foreign nationals have died, and we know that a short while ago, the minister in the Ministry of External Affairs, the MOS Minister of State, Keerthivardhan Singh, visited the injured in the various hospitals, which included several foreign nationals. We are given to understand that Bangladeshi nationals, Libyan nationals, nationals from Cameroon and charged, but we still got the breakdown of those who have lost their lives, especially when it comes to the list of foreign nationals. We also know that it was clear case of violation of property laws and narrow lanes that prevented the vehicles to pass early on, and the lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has announced measures for next one month so that all possible rules are followed. But it is clearly a case of violation, and we are getting to know that the owner is being arrested. He has been taken to custody, something that is which is emerging. We are still waiting for more details. But this is some information that has emerged last 15 minutes or so. But clearly, this is one of the worst fires in the Indian national capital, and indeed a shocking incident.
2: That is our assistant editor for foreign affairs, Siddhant Sibiyan. He is reporting on the latest that we are receiving in our newsroom. And we do understand that over 12 hours after the incident, the owner of the hotel in Delhi, Lovkesh Bajaj, has been arrested, and the investigation is currently ongoing. Let's now take a look at some of the stories making headlines across India at this hour. The Supreme Court of India has constituted a 5-member high-powered committee to arrive at the uniform definition of the ecologically sensitive Aravalli Range. According to an order passed on May 25th, by a bench headed by the CJI, the committee has been directed to submit a comprehensive report by August 30. senior advocate and

0: do understand that the hotel owner has been arrested. We will be giving you more updates and details as soon as we get them. But the latest is the hotel owner has been arrested by the police, and this comes after the police had filed an FIR against the owner and one more accused person. Horrifying visuals from the incident showed people jumping out of windows in the middle of the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were escaping. The hotel, located in the narrow lanes of Hors Rani, was owned by one Lavkesh Bajaj, who has now been arrested. Reports say Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 guests. The hotel reportedly had no fire knock. At the time of the incident, there were more than 40 guests inside the hotel. Many of them, foreigners, were in the national capital for medical treatment.
1: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कॉन्स्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी, और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी। वहां से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछा, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे, 4 जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंसेज को कॉल कर रहे थे, और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10, 12, 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर, भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था, सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा। आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए, हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला, समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
2: 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
0: The Indian Prime Minister has expressed grief over the loss of lives. He has announced a relief of 2 lakh rupees for the next of kin of those killed, while the injured will be given 50,000 rupees each. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. In a post on X, the Chief Minister prayed for the speedy recovery of those injured and for the strength and courage to all those affected by this heartbreaking tragedy. Let's talk to our correspondent Sidhan Sibol. He is before they made the arrest of the owner of the hotel. What he's looking out for, and this investigation has just begun.
3: Well, it is an investigation that has started, and of course, this is indeed a shocking development. All throughout the day, it has been dominating the headline. But 11 foreign nationals have died, and we know that a short while ago, the minister. In the Ministry of External Affairs, the MOS, Minister of State, Keerbhardhan Singh visited the injured in the various hospitals, which included several foreign nationals. We are given to understand that Bangladeshi nationals, Libyan nationals, nationals from Cameroon and also from Bangladesh have been impacted. Some have been discharged, but we are still waiting for the breakdown of those who have lost their lives, especially when it comes to the list of foreign nationals. We also know that it's a clear case of violation of property laws and narrow lanes that prevented the vehicles to pass early on. And the Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has announced measures for next 1 month so that all possible

0: तो यहाँ पर लो एक धुएं का बहुत दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? तो स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है, तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कॉन्स्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी, और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी, तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी। वहां से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं, स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे, और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो कूदे, और चार जन जेंट्स कूदे, चार जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल, 10-12-15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था। सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा, आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए, हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला, समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
1: 8 वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो हो गए हैं।
2: The Indian Prime Minister has expressed grief over the loss of lives. He has announced 8 lakh rupees for the next of kin of those killed, while the injured will be given 50,000 rupees each. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. In a post on X, the Chief Minister prayed for the speedy recovery of those injured and for the strength and courage to all those affected by this heartbreaking tragedy. Let's talk to our correspondent Sidhan Sibol. He is on phone right now. Sidhan, there was a circular that was issued by the police before they made the arrest of the owner of the hotel. What are the police looking out for? And this investigation has just begun.
3: Well, it is an investigation that has started, and of course, this is indeed a shocking development all throughout the day. And, we know that a short while ago, in the Ministry of External Affairs, the MOS, Minister of State, he'll be the injured in the various hospitals, which included several foreign nationals. We are given to understand that Bangladeshi nationals, Libyan nationals, nationals from Cameroon and also from Bangladesh have been impacted. Some have been discharged, but we are still waiting for the breakdown of those who have lost their lives, especially when it comes to the list of foreign nationals. We also know that it was clear case of a violation of property laws and narrow lanes that prevented the vehicles to pass early on. And the Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has announced next 1 month so that all possible rules are followed, but it is of violation, and we are getting to know that being arrested, he has been taken to custody, something that is which is emerging. We are still waiting for more details, but this is some information that has emerged last 15 minutes or so. But clearly this is one of the worst fire incident in the Indian national capital, and indeed a shocking incident.
2: That is our assistant editor for foreign affairs, Sidhan Sibol. He is reporting on the latest that we are receiving in our newsroom. And we do understand that over 12 hours after the incident, the owner of the hotel in Delhi, Lovkesh Bajaj, has been arrested, and the investigation is currently ongoing. Let's now take a look at some of the stories making headlines across India. At this hour, the Supreme Court of India has constituted a 5-member high-powered committee to arrive at a uniform definition of the ecologically sensitive Athali range. According to

0: Minister of Karnataka marking a formal leader transition in the state government. Shivkumar's swearing in comes days after Siddaramaiah's resignation. A Delhi court orders the framing of charges in Makoka linked with extortion allegations against actor Jacqueline Fernandez, alleged conman Sukesh Chandrasekhar, among others.
1: I first of all challenge him. First of all, let him have some shame, Mr. Satinder Jain, that let him.
0: Here at Beyond, we've been tracking the Delhi fire tragedy. At least 21 people, including many foreign nationals, have been killed after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malviya Nagar. The cause of the fire is yet to be ascertained. The fire that broke out at around 8:50 a.m. this morning started from the eatery located at the basement and soon engulfed the five-story building. The fire that engulfed Flourish stay bed and breakfast later spread to another hotel, Mikasa Inn, next to it. Horrifying visuals that emerged from the incident showed people jumping out of the building amid the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the fall of people. The hotel, located in the narrow lanes of Hosrani, was owned by one permission to build six rooms, but 25 were occupied by the guests. The hotel reportedly had no fire NOC. At the time of the incident, there were at least 40 guests inside the hotel, including foreigners who were in the national capital for medical treatment.
2: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लग गई है तो फिर नहीं खोली हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कॉन्स्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी, हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़की तोड़ी। वहां से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जम करो, तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई तो गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए, हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और चार जन जेंट्स थे, चार जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहां पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10, 12, 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर, भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था, सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा, आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए, हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला, समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
3: 8 वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
0: Prime Minister Narendra Modi, meanwhile, has expressed grief over the loss of lives. He's on relief of 2 lakh rupees for the next of kin of those who've been killed, while the injured will be given 50,000 rupees each. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in this devastating incident. In a post on X, the Chief Minister prayed for the speedy recovery of those who've been injured and for strength and courage to all those affected by this heartbreaking tragedy. Now, this tragedy highlights such a norm of flooring protocol by several establishments in the area. Our correspondent Dharamjot Kaur has sent us this report from the site of the incident. Take a look.
4: The hotel, which is at the center of the fire tragedy in Malviya Nagar, is not the only such structure in this entire area.

0: talks are still ongoing and that reports of a cessation of talks are false and erroneous. But Trump has said that he would like to meet with it pursue nuclear weapons. He further added that the country's supreme leader is ongoing U.S. talks. At least 21 people, including 12 foreign nationals, have reportedly died after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malviya Nagar. Over 12 hours after the incident, the owner of the hotel, Lovekesh Bajaj, has finally been arrested. The cause of the fire is yet to be ascertained. In the latest, the police arrested the hotel owner, Lovekesh Bajaj, more than 12 hours after the fire broke out at the Flourish Estates properties. From the eatery located at the basement and then soon engulfed the five-story building. The fire later spread to another hotel, Mikas Inn, which is next to it, and the authorities received the first distress call at around 8:50 a.m. The police have now registered an FIR on grounds of culpable homicide under the relevant sections, and the authorities are also looking to register a lookout circular against the hotel owner, Lovekesh Bajaj, and one more accused so that they do not flee abroad. Now, horrifying images from the incident have shown people jumping out of the windows in the middle of the blaze in thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were trying to escape. The hotel that is located in the narrow lanes of Hawz Rani was owned by Lovekesh Bajaj. Reports say that Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by the guests. The hotel reportedly had no fire NOC at the time of the incident. There were many inside the hotel. Many of them were apparently foreigners who were in the national capital for medical treatment.
1: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था जिससे मेरा दम घुट रहा था तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे और हमने खिड़कियाँ तोड़ी दिनेश यादव बीट कॉन्स्टेबल हमारे साथ था उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियाँ तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियाँ थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियाँ तोड़ी वहाँ से लोग बाहर निकले हमने कहा लोगों को जंप करो तो वो जंप करने की हिम्मत नहीं हुई तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए हमने कहा अब आप कूदिए तो उसमें एक बच्ची चार जन लेडीज कूदी लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जंप करे लेकिन वो सकुशल सब बच गए इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10-12-15 लोग बच चुके थे उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी आग बहुत बढ़ चुकी थी कोई कोताही नहीं बरती थी कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था सबने मिलकर के सहयोग करा सबने मिलकर के टीम वर्क करा आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला जो हमें चाहिए था हमें सब मिला समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया
2: 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं उनका इलाज चल रहा है वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है एक पेशेंट था जिसके 20% से ऊपर बर्न्स थे वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया पेशेंट स्टेबल थे माइनर इंजरीज के साथ आए थे तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं
0: Prime Minister Modi has expressed his grief over the loss of lives. He's also announced a relief of about 2 lakh rupees for the next of kin of those who have been killed, while the injured will be given about 50,000 rupees each. The Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. And according to the Delhi Chief Minister's office, a magisterial inquiry has also been ordered following the tragic blaze. And an FIR has been registered against the owner of the property. The Delhi Chief Minister's office has also ordered for a citywide crackdown against illegal properties, unauthorized guest houses and establishments.

0: regulations, and the authorities are also looking to register a lookout circular against the hotel owner Lovekesh Bajaj and one more accused so that they do not flee abroad. Now, horrifying images from the incident have shown people jumping out of the windows in the middle of the blaze, thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were trying to escape. The hotel that is located in the neighborhood say that Hotel B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by the guests. The hotel reportedly had no fire NOC at the time of the incident. There were more than 40 guests inside the hotel. Many of them were apparently foreigners who were in the national capital for medical treatment.
1: जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियां तोड़ी। दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था, उसने अथॉरिटी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी, और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी, हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी, वहां से लोग बाहर निकले। हमने कहा लोगों को जंप करो, तो वो जंप करने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं, जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे, 4 जन लेडीज कूदी, लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जम करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10-12-15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर, भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था। सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा, आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए, हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला, समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया।
2: 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें वॉक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें सबके ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है, एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
0: Prime Minister Modi has expressed his grief over the loss of lives. He's also announced a relief of about 2 lakh rupees for the next of kin of those who have been killed, while the injured will be given about 50,000 rupees each. The Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. And according to the Delhi Chief Minister's office, a ministerial inquiry has also been ordered following the tragic blaze, and an FIR has been registered against the owner of the property. The Delhi Chief Minister unauthorized guest houses and establishments. In a big blow to the former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, her party All India Trinamool Congress is on the brink of a split. This is internal rift has widened nearly a month after the party's major defeat in the West Bengal elections. The party has dissolved all its committees and frontal organizations in the state. In a social media post, TMC declared that it will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance review and organizational assessment at every level. It further said that the units within the party will be reconstituted based on the findings. Meanwhile, the expelled TMC MLA and the rebel leader Ritabrata Banerjee has been elected the new leader of opposition in the state, with the support of about 58 other rebel MLAs. However, he has urged Mamata Banerjee to serve as the party's chief advisor.
3: In this two-thirds strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly, this legislator party doesn't believe in I, it believes in we. Whatever norms are framed out, we have followed every norms, and that's why we have been accepted as the principal opposition in this 18th West Bengal Legislative Assembly.
0: And earlier, the expelled Banerjee met with the West Bengal Assembly Speaker Ratindra Bose and submitted support letter signed by

0: to reassure allies that reduced conventional deployments do not mean reduced security commitments. Moscow has repeatedly portrayed NATO's military buildup near its borders as a threat. Any move to place additional nuclear-capable aircraft closer to Russia could heighten tensions at a time when relations are already at their lowest point in decades. And concerns about nuclear escalation are no longer limited to Europe. Chinese People's Liberation Army General Meng warns that nuclear risk is increasing globally. The warning comes as wars in Ukraine and West Asia continue to reshape global security calculations. For now, these remain discussions, not decisions.
1: International arms control disarmament and the non-proliferation regimes have been severely eroded. A series of nuclear arms control guardrails have collapsed. The two countries with the largest nuclear arsenals have entered the vacuum with no treaties, no verification, and no dialogue.
0: Diplomats say dialogue must continue despite differences. Military planners stress safeguards and clear communications. Analysts point to arms control gaps and fractured crisis channels as the real and present danger. Bureau report, Beyond World is One.
2: At least 21 people, including many foreign nationals, were killed after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malveer Nagar. The AM in the morning started from the eatery located at the five-story building. The fire later spread to another hotel called Mikasa Inn, which is next to it. Horrifying visuals from the incident showed people jumping out of windows in the middle of the blaze and thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were escaping. The hotel, located in the narrow lanes of Hors Rani, was owned by one Lavkesh Bajaj. Reports stay B&B had permission to build six rooms, but 25 rooms were occupied by guests. The hotel reportedly had no fire knock. At the time of the incident, there were at least 40 guests inside the hotel, including foreigners, who were in the national capital for medical treatment.
3: मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहां पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था जिससे मेरा दम घुट रहा था तो सब्जी वाले से क्या हुआ भैया तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है तो स्नैक लाइट में आग लगी है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहां लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे और हमने खिड़कियां तोड़ी दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी वहां से लोग बाहर निकले हमने कहा लोगों को जंप करो तो वो जंप नहीं हुई तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है तो उनसे हमने गद्दे लिए आप कूदिए तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी उनके पापा थे वो लोग कूदे और चार जन जेंट्स कूदे चार जन लेडीज कूदी लगभग 10 से 12 लोग वहां पे जम करे जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10 12 15 लोग बच चुके थे उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी आग बहुत बढ़ चुकी थी कोई कोताही नहीं बरती थी कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था सबने मिलकर के सहयोग करा सबने मिलकर के टीम वर्क करा आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला जो हमें चाहिए था सब मिला समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया
4: लेटर पे है उनका इलाज चल रहा है इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके ज्यादा